0: गुड न्यूज एफएम 105.1
1: विश्वास सुनैबाट आउँछ। गुड न्यूज एफएम रेडियो 105.1 मेगाहर्ज।

इमानुएल नेपाली मण्डली कुर्दिस्तान सुलेमानी इराकको प्रस्तुति रेडियो कार्यक्रम आशाको किरण सुन्न नभुल्नुहोला। गुड न्युज एफएम 105.1 MHz प्रत्येक बुधबार साँझ 5 बजेदेखि 5:30 सम्म पास्टर आशिष।

कसरी त यङ्गे धुङ्कुगो खन दाउ थगु सहरिया त सुरक्षित तोता त धङ्गु डोङ्कल नापाङ्गु समयल सुइगु अध्याय पेगु पत्के ताटौ डु अले इपी तस्क खोल ठुली अप खोल कि इम्के शक्ति हे मदे आउन अभिमेले क दाउद त्या निम कलापिन त थ नाप यङ्कुगु ख गुकि वया यम कला अभिगेल न दुगु ख दाउ थगु व्यक्तिगत छेन छेतिया दुख जक्क मखु दाउ त्या सक्ने मनु त दुखित क्रोधित जोया चुङ्गु ख इमे क्यापिन त कै दे यङ्कु गुणी इमे तस्क नुग मछिङका दाउ द्या त लो त के का स्यागु खला त वयागु जीवने थो तस्क तनापूर्ण इले दाउद थ परमेश्वर परम प्रभु के शक्ति माला दिल नापाङ्गु समुएल सुइगु नेगु च्याकु पत्के धाटगुदु दाउद अभिमेले क्या पुजारी अभिया थार या त धाल पुजारिया भिङ्गु श्रुति काप या ल जिथा हजी अले अभिया थार वो हयाबिल अनलि दाउद परमेश्वर के न्यन छु जी उपी लुई त याइपी मनुते त ल्युल्यु उनेला छु जी इम त नाप्ला के फैला परम प्रभु वया त लिसबिल ज्यू छ इम त ल्युल्यु हु छ इम त नाप्लाका फुक्क जो ना यङ्कुपी त छुटेया ना हजी पृथ्वी दक्ले ख्युङ्गु इले जिस न्योने फैगु दक्ले महत्वपूर्ण पला नापाङ्गु पला धैगु परमेश्वर या शरणे मुनिगु ख वेकया मतिना झिगु अस्तित्व या सन्तुष्टि याएके बि वेकलजी त सान्त्वना त बि अले वेक पाखे मागु बुद्धि माला दिस ताकि चिस झी दुने लाना चुङ्गु अवस्था या त सह या भै निगु गरन्थे छगु यो सङ्गु पत्के धाटगुदो झी प्रभु येशु ख्रिस्ट या परमेश्वर व बा या त झिस सुभावी हेमा वेक या दया माया दुम व फुक्क कथा या सान्त्वना ब्यादि म परमेश्वर ख यपिन यनमिपिन झिस दोङ्के बोले उखिया नीति झिस तस्क मु पुले मारी परमेश्वर झी त तस्क दया याना दिन अले वो झी त क्षमा व सान्त्वना बि त थगु लाल होना दिल दाउद उब्ले हे परम प्रभु या आज्ञा माने याना अभिमेलिक ते त ल्युल्यु हुन व थ सेना पाखे पेस म मनु त थ नाप होल मिश्र या छम दास याके मुङ्कुगु जानकारी या माध्यम दाउद थगु नगरे आक्रमण या त यापि सक्ने अभिमेलिक कि ते त जुना क्याय त सक्षम जुल नापाङ्गु समुएल सुइगु अध्यायु च्यागु गुगु पदके धाटगुदो दाउद थ निमकलापि नाप अभिमेलिक कि तेसँग यङ्कुगु सक्ने मनु त फुक्क वस्तु या त छुटे या नाल इम्स लाका यङ्कुगु फुक्क सामान क्यापि व इपि थगु निधि यङ्कुगु सामान नाप फुक्क दाउद लित हल थोन छु न तो मफ्यु यपि न्यनमिपि अवस्था न्याब्ले बामलागु जुई मखु छिगु निराश या ख्युङ्गु इले छिगु दुन नुग्ल निसे परमेश्वर या त प्रार्थना याना दिस वयागु सान्त्वना वो वयागु बुद्धि न माला दिस वेकल छि त छु याए त दया दिल वो पालन याना दिस अले दाउद या विषय या गु उद्धार या त छि अवश्य हे खनि परमेश्वर यो वचन येना दिगुनी छि सकसित न परमेश्वर सुभावीमा जय मसी न्यनमिपि छिम्स नकतिनी हे जक बाइबलिया प्रभावशाली शिक्षकको आत्मिकी लपु केनादिम सोमन भिक्टर चोयादिगो हसना झिगु हे नेपाल भाषाया रेडियो ज्याजो स्पार्क माई फेथ झिगु विश्वासके चमखया बिउ बारे छिके छु प्रतिक्रिया सुझाव दुसा स्वापु तया दिफै उकिया नीति जिमके जिमगु मोबाइल नम्बर दु 9868553349 9868553349 कासा ज्याजो नेना दिगुनी छित यकु यकुए सुब्या परमेश्वर छित सवाबीमा जय मसीह।

कार्यक्रम विश्वासको वचन सुन्न नभुल्नुहोला। प्रत्येक आइतबार साँझ 6 बजेदेखि 36 सम्म र पुनः प्रसारण शनिबार साँझ 6 बजेदेखि 36 सम्म पास्टर अनिल सुनामको साथमा।